나즈가 나츠르즈가능나 쉐와 이든즈르나즈가 푸그룬즈가닝 아르문 쩨바챤즈르나니 요스 년치즈가다 푸그룬르문 쩨바챤그 커킹 코르팅 지와 첼림 퍼코 누르카데다 스타말가 응음바그즈고 노르니가 나츠송스 스카데다 푸그룬르문 쩨바챤그 커킹 코르창마 오 다치존 쳅챠마랑 쳅챠마랑아 중삼증이 치기 이름나 추추라뜨기 접고 대지 과구탕스 스카데다 하르지안증 칸거가포티 샤 탐칠즈는도 구사미 하르가투 침부즈그치 샤브잔독 프르스톤이블랑이 땅땅스 스카데다 푸그룽 거자루 워챠땅 지와인 퍼누르첸그 커킹 쿠르창마잉 커케라냠금 파리이와송스 Tanita, pagarun tamchapu, chukku gaiigidan garu gaiyungi. Chukku gaiigidan, ta chutantong ta ngoma chigzang, chorjima shuga nga chukwar janda chigshigra. Da zivshazig. Shkabdeta, chukku gaiigidan ka pagarun ramun jamba jana. Aro, tomar chur janda pshigjina, chung korchang mirjagam shigjiyin. Da zitino ga, pagarun ramun jamba janga, ओ जु थोमन ng खुर छंगमा गर जाते सिगा तंग तने तंग गिर जान दसिगरे तजी फ्यास टुकु गा यगदन गयंग कोंग गपरन र मुन जंबा चांग ग क्वार्टर द थोमर करकिन खोर नाम गर जाते सिग तने टुकु गपरन र मुन जंबा चांग गर जाते सिग करजो छंगमा जाली थार क चिक तंग सिग ताम जत कासा का छविन जोगो नुर का देता शंगलम ना जोगो नु खाता जक को सोंस Katati, o, shiwa aga yigdan zir konundi, shiwa tsangma arjali tangnundi, nguma tondag zang azgiri, shiwa azga arig zang zgiri, tirtabka nira shiwa andir chukhuzig zhigoga sami, shiwa aga yigdan zaga yonsg. Gapdeta, katab shiwa aga yigdan tsangha toni, o, shiwa aga yigdan, chu nguma shiwa azga arig zang zgiri, aniga chukhuzig zhigna chu. Dazi zhinoga. Shiwa aga yigdan ga, o, ngi chosok chukho chigna marigo, chun nam nima zga nga zutangna tangi chik goni. Da zi shazg. Shkate ta, kata ga, o, chu sima di mu hira, ngi chogo nume no kotag yin. Da zi shali. Shkab tani zungi ta, kata ra shiwa aga yigdan niga yin chukho zanga ga luksung zg. O, shiwa aga yigdan ka kata chukpo chignoonda aripal kixi, aripal yang shiwa aga yigdan ra chukchika yonsk. Daida, shiwa aga yigdan ra kata aripal changma chukpo zang aga lak

0: मचिक सातमुरी तिना सानी सोसो सुंदाली ततन जाज गुसुं जाजवी सानी नि देख ले अलंगुती दाली देख त गंगुदो इन तमुबिन तरी सोना त छ से जिन त न्यंगो लाकन सुना लिका न्यंगो जिप छात ता गोटंग लाकन जु जिना रा गोटंग छ जिप बला तिमु जरे ते दोनान तयार ममो ठमखंग क्षेत्री चु कोरम थोनी या रक्ति ते ना यंग त्रिचिक रेन तयो त्रिदन थोनु दा मा तिमु जरे तिखु मचि चोतन द जकोरिका छ जिनी से जिना थोमर सुंदाली ता न्यंगो जिप छात जु क दिनोनी ta lamtang tiga ga rang nuga nyanggo samchi sosam tamu zi ta sunga da rang rang ka sani sani manja sa zonkak manja sa timu ga mana tagadu tena nyanggo samchi sosam ta sunga da rang rang ka sani taga mamu chamka nga shakti ichu tayi nain tiin chuga nyaga ga te nga chi sani ndani sunga da li ta tanglayi da li tiri tanga na denkhang ta denkhang la suka tsangma abdiki da li nga chi mamu chamka nga shakti nain mamu chamka nga shakti inu korang toni दासमदारी मची गेंदरन द मंगठंगंग विनी दाली मची दांद दमदी चु थौजनी दमदी चु कोरम थोनी मची चंग मची तंग इनु ग छ दिस जा ता चोतुन दग लाकनी लिका अंदर क सुंग द लिका दई ली तंग लिका लिनु जिनी ता लिनसम जक तंग लिनसम जक जोनी तंद चो लाचक लाकनी अलाचक गुर छ जिप छ सिनी तमु मशीन गेंद क मशीन द वो सुंग ते नो ना मची ता तरी फ्या कु दमदी कुर का मची छ चिनी फ्या ला शान नु जिनी तंग छ छ ग थौजनी ते ना ता जिंद क सुंग दारी मचुन्दि नियगो गगनंग नियदनते ता गोम छदगते गोजिना छरेगनानि अलाथकनानि तोंचोनारि निमातेफिन दंदर दिनथोनि नियनिग अलाथकते सोने निमाते अखतेकुजिक दंदर छदगादिना नियनिते अलाथकलाकानि अलाथकते अमाग दिकु निमातेते तसोने दिनथोनि छदसेजिलांगचि ता कगे जिंदरदे जिनि सोंदा निय जेंबार्क अलाथकंद दिचो तारते जुंद शेलदारि दिचिलि दारि मचि ततर तकजेनुंद नताव दिने मचि दमुग अमंगतंग नंग ता नेचुल गंजा ग सोजिग चोखेज जे
1: जे
0: ता तनि चोखे निया मुंजिना ता चोखे निया मुंद ताव दिना ता सोंदा थिंथिल खेगन तक सोजिर दो इंजिना नंतंग इंजिना रंग छि सोंदा ता नेंतंग चोजे दर ती जोनि नेंतंग चोजिन द इंजिना रंग छि सोंदा जाटम रुख छुइन जाटम रुख छुइ दालि ता मु छि ने छ द रुख छुइन से जिना द जाटम रुख छु के छाचिन तंग थन सिग्नेचर से जिना यार यासिन उन द मनान द इंजिना वमेस दिगर